आप ऐसा करियर चुनना चाहते हैं जहाँ आपके भविष्य के साथ समाज का भी भविष्य बदले, तो आइए MGM यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी साइंस में, जहाँ डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, BSc ऑनर्स कम्युनिटी साइंस विद रिसर्च और अल्सो MSc स्पेशलाइजेशन इन फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स, एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड रिसर्च ओरिएंटेड एजुकेशन। एडमिशन ओपन फॉर 2026-27। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन 7620322186 और 7017088546। MGM यूनिवर्सिटी, NCT, छत्रपति संभाजीनगर।

पाखा जुयाल को हमने अब तक देखा है डांस करते हुए, कॉमेडी करते हुए, होस्ट करते हुए, लेकिन अब हम उसे देखेंगे विलन का रोल निभाते हुए भी। हेलो आरजी इतनाल को आप सुन रहे हो ऑन एमजीएम 90.8 एफएम। और राघव ने भाई क्या एक्टिंग की है टीजर के अंदर समझ में आ रहा है। साउथ की फिल्म है नानी की अपकमिंग एक्शन थ्रिलर द पैराडाइज का टीजर आ चुका है और फिल्म में राघव जुयाल बने हैं विक्रम मालिक, एक विलन का कैरेक्टर ये निभाने वाले हैं। टीजर में राघव का लुक देखो, टीजर में राघव का लुक ना एकदम बेहतरीन है। देखो नानी की ये फिल्म है, नानी में तो बहुत बेहतरीन एक्शन की है, लीड एक्टर वो है, लेकिन कहीं ना तो राघव के फैंस को राघव का किरदार ने ज्यादा अट्रैक्ट किया है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जब एक एक्टर अपनी एस्टैब्लिश्ड इमेज से कंप्लीटली अपोजिट कैरेक्टर चूज करता है ना, तो ऑडियंस के लिए क्यूरियोसिटी ऑटोमेटिकली बढ़ ही जाती है। नानी की क्या ही तारीफ करें यार, ऑलरेडी बहुत सुपर डुपर हिट एक्टर है और जिस तरीके से उनका इस फिल्म के अंदर लुक है ना भाई, एकदम राउडी वाला है और रॉकिंग वाला है, देख के तो मजा आने ही वाला है। और सबसे खास बात तो भाई सबका एकदम ध्यान खींच लिया था राघव जुयाल के लुक ने और उनके कैरेक्टर ने। राघव जुयाल विलन बनके नानी की दुनिया में कितनी तबाही मचाएंगे। बाय द वे नानी मतलब वो एक्टर है, उनका नाम नानी है। आप ये मत सोचिएगा कि नानी नानी क्यों कह रहा है, ओके? अगर आपने अब तक ये टीजर नहीं देखा है तो द पैराडाइज का टीजर देख लीजिएगा और जल्दी इसका ट्रेलर भी लॉन्च होने ही वाला है। फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं श्रीकांत ओडेला और म्यूजिक है अनिरुद्ध का। आए हाय अनिरुद्ध का म्यूजिक तो लाजवाब होता ही है। तो भाई डांस फ्लोर से विलन जोन तक राघव जुयाल का ये ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेटली इंटरेस्टिंग होने ही वाला है। द पैराडाइज जहां पैराडाइज नाम है लेकिन दुनिया बिल्कुल पैराडाइज वाली नहीं लग रही है। बाय द वे टीजर आपको कैसा लगा बताइए मुझे DM on Insta RJ Adnan।

0: गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आरजे अदनान आपके साथ है आपकी मॉर्निंग गुड करने के लिए इन द शो
1: ऑल इज वेल आरजे अदनान का मॉर्निंग शो फ्रेशनेस लाइव रेडियो का फ्लो
2: ऑन एमजीएम 90.8 एफएम।
0: और शो में ना तो मैं आपको गिफ्ट जीतने का एक मौका देता हूँ, उसके अंदर मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ और आप मुझे उसका जवाब बताते हो। तो आज का सवाल कुछ ऐसा था कि भारत में ऐसा कौन सा शहर है जहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका जवाब है राजस्थान का कोटा शहर। जी हाँ, कोटा शहर, यहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल आपको बिल्कुल भी नजर नहीं आएंगे। इसका स्ट्रक्चर ऐसा कुछ बनाया है कि जहाँ पर ट्रैफिक जाम भी नहीं होगा, ट्रैफिक चलती रहेगी और ट्रैफिक सिग्नल ही नहीं है। और ये दुनिया का दूसरा शहर है जहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल नहीं है। तो इस वजह से इस शहर को ट्रैफिक सिग्नल फ्री शहर भी कहा जाता है। सो कोटा इसका जवाब है और आज के सवाल का एकदम सही जवाब दिया है गौरव काले ने। सो कांग्रेचुलेशन गौरव काले, आज आप विनर बन चुके हो, आपको हमारी तरफ से एक स्पेशल गिफ्ट मिलने वाला है। सो गौरव जी आज के विनर बन गए। दोस्तों आप भी ऐसे विनर बन सकते हो, बस मेरे सवालों के जवाब देते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए।

0: हाँ जी, क्या हाल चाल? एकदम मस्त, बढ़िया। आप
1: All is well. RJ and Nanak morning show. Freshness light radio ka flow.
0: On MGM 90.8 FM. RJ Adnan आपके साथ है on MGM 90.8 FM. बड़ा वक्त हो चुका है मेरा था कहने का, यानी कि RJ Adnan आपके साथ था, टाप टाटा बाय बाय कर रहा है, मैं तो चला अब अपनी गली। आज का शो आपको कैसा लगा? आई होप कि पसंद आया होगा, तो आपका फीडबैक हम तक जरूर पहुंचाइएगा। DM कीजिए का इंस्टा पर RJ Adnan इस इंस्टा पेज पर, या फिर व्हाट्सएप कीजिए 9359320080। इस नंबर पर आपका फीडबैक बहुत जरूरी है, और इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कीजिएगा, फॉलोअर्स भी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। बाकी तो अपना ख्याल रखिएगा, आराम से गाड़ी चलाइए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, और फुल ऑन एंटरटेनमेंट के लिए सुनते रहिए MGM 90.8 FM। मिलते हैं अगले अपने शो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय, एंड स्टे ट्यून्ड ऑन MGM 90.8 FM।

आप ऐसा करियर चुनना चाहते हैं जहां आपके भविष्य के साथ समाज का भी भविष्य बदले, तो आइए MGM यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी साइंस में, जहां डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, BSc ऑनर्स कम्युनिटी साइंस विद रिसर्च और ऑल्सो MSc स्पेशलाइजेशन इन फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स, एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड रिसर्च ओरिएंटेड एजुकेशन. एडमिशन ओपन फॉर 2026-27. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन 7620322186 और 7017080546. MGM यूनिवर्सिटी, NC3, छत्रपति संभाजीनगर.

आपकी मन पसंदीदा आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MGM 94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

0: शहबाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

आप ऐसा करियर चुनना चाहते हैं जहां आपके भविष्य के साथ समाज का भी भविष्य बदले, तो आइए MGM University के डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी साइंस में, जहां डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, BSc ऑनर्स कम्युनिटी साइंस विद रिसर्च और अल्सो MSc स्पेशलाइजेशन इन फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स, एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड रिसर्च ओरिएंटेड एजुकेशन. एडमिशन ओपन फॉर 2026-27. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन 7620322186 और 7017080546. MGM University, NC3, छत्रपति संभाजीनगर.

0: कुछ आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
1: MGM 90.8 FM,
0: साथ है तो बात।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

आपकी मन पसंदीदा आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MGM 94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

0: फ्रीक्वेंसी नहीं, यह आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।
0: यह है एफजीएम 90.8 एफएम।

मन पसंदीदा आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MGM 90.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्टर दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। तो आखिर शुरू हो ही गया है नई हफ्ते की नई कहानी की नई शुरुआत। मंडे यानी मंडे इवनिंग, दिन भर की भागदौड़, ऑफिस की मीटिंग्स, कॉलेज क्लासेस और रोजमर्रा की जिम्मेदारियों के बाद अब वक्त है थोड़ा सा रिलैक्स करने का। कई लोगों के लिए मंडे थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन सोचिए अगर हफ्ते की शुरुआत मुस्कुराकर हो जाए तो पूरा हफ्ता कितना आसान लग सकता है। इसलिए आज के इस खूबसूरत शाम में काम का तनाव थोड़ा साइड में रखिए और अपने लिए कुछ पल निकालिए। एक कप चाय हो, हल्की सी कॉफी हो या फिर दोस्तों और परिवार के साथ कुछ प्यारी बातें, यही छोटी छोटी चीजें हमारी शाम को खास बना देती है। और अगर आपके साथ आपके पसंदीदा गाने हो तो फिर क्या ही बात हो। तो इस मंडे इवनिंग को बनाइए थोड़ा हल्का, थोड़ा खुशनुमा और थोड़ा म्यूजिक से भरपूर। हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं एक से बढ़कर एक शानदार गाने जो आपके मूड को और भी बेहतर बना देंगे। कहीं मत जाइए, बस जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट आरजे मनीषा आपके साथ और आप सुनते रहिए MG 90.8 FM। साथ है तो बात है।

0: आप ऐसा करियर चुनना चाहते हैं जहाँ आपके भविष्य के साथ समाज का भी भविष्य बदले, तो आइए MGM University के डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी साइंस में, जहाँ डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, BSc ऑनर्स कम्युनिटी साइंस विद रिसर्च और अल्सो MSc स्पेशलाइजेशन इन फूड न्यूट्रिशन एंड डायटिक्स, एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड रिसर्च ओरिएंटेड एजुकेशन. एडमिशन ओपन फॉर 2026-27. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन 7620322186 और 7017085546. MGM यूनिवर्सिटी इंस्टिट्यूट को छत्रपति संभाजीनगर.
1: रंगभूमीच्या कला विश्वाचा अनुभव घ्यायचा आहे, मग तयार व्हा जिगीशा नाट्य महोत्सव 2026. नाट्य प्रयोग, अभिवाचन, परिसंवाद आणि रंगभूमीशी संबंधित विविध कार्यक्रमाची खास मेजवानी. या महोत्सवाचे उद्घाटक प्रसिद्ध अभिनेत्री रत्ना पाठक, तर नाट्यविषयक पुस्तक प्रदर्शनाचे उद्घाटक ज्येष्ठ लेखक बाबा भांड, सवाल जवाब, MHG सुटकेस आणि भरड यांसारखे दर्जेदार नाट्य प्रयोग. मराठवाडा आर्ट कल्चर अँड फिल्म फाउंडेशन आणि महात्मा गांधी मिशन आयोजित जिगीशा नाट्य सहवास 2026 21-22 आणि 23 ऑगस्ट रुक्मिणी नाट्यगृह MGM परिसर छत्रपती संभाजीनगर. तरी सर्व रसिक प्रेक्षकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे.
2: Wondering what's next?
3: Unlock your future at Mahatma Gandhi Mission University,
2: where innovation meets excellence. Admissions are open
3: across undergraduate, postgraduate, diploma and PhD programs
2: across diverse fields from engineering and AI to law.
3: Apply now at www.mgmu.ac.in
2: or call 9067612000.

सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। उम्मीद है आपका मंडे अच्छा जा रहा होगा और अगर अभी तक थोड़ा सा भी मंडे ब्लूज महसूस हो रहा है तो चिंता मत कीजिए क्योंकि अब वक्त है मंडे मोटिवेशन का। हर नया मंडे हमें एक नया मौका देता है, पिछले हफ्ते जो रह गया उसे पूरा करने का एक नया मौका और जो सपना हमने देखा है उसके एक कदम और करीब जाने का नया मौका। याद रखिए, सफलता एक दिन में नहीं मिलती लेकिन हर दिन की छोटी छोटी कोशिशें मिलकर बड़ी सफलता जरूर बनाती है। इसलिए आज अगर काम ज्यादा है, चुनौतियां बड़ी है या रास्ता थोड़ा मुश्किल लग रहा है तो बस एक बात याद रखिए, आप जितना सोचते हैं उससे कई ज्यादा आप मजबूत है। मंडे को बोझ मत समझिए, इसे एक नई शुरुआत समझिए क्योंकि हर बड़ी कहानी की शुरुआत भी किसी मंडे जैसे एक साधारण दिन से ही हुई थी। तो आज खुद से एक वादा कीजिए कि शिकायत कम करेंगे, कोशिश ज्यादा करेंगे, डर कम रखेंगे, हौसला ज्यादा रखेंगे और हर काम को पूरे दिल से करेंगे। चलिए इसी पॉजिटिव सोच के साथ और इसी नई एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हैं, मुस्कुराते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं और जुड़े रहिए हमारे साथ क्योंकि अभी तो इस शाम की शुरुआत हुई है और म्यूजिक का सफर जारी है। ओनली ऑन MGM 90.8 FM साथ है तो बात है।

आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। मंडे आ चुका है और ये एकदम सही समय है अपने पूरे हफ्ते का प्लान बनाने का। अक्सर हम बिना प्लान के हफ्ते की शुरुआत कर देते हैं और फिर पता नहीं चलता कि समय कहाँ निकल गया। लेकिन अगर हफ्ते की शुरुआत में ही अपने ज़रूरी कामों की एक छोटी सी लिस्ट बना ली जाए तो चीज़ें काफ़ी आसान हो सकती है। इस हफ्ते आपको क्या हासिल करना है, कौन सा काम सबसे ज़रूरी है, किस दिन किस काम पर ज़्यादा फोकस करना है, बस कुछ मिनट निकाल कर ये सोच लीजिए। यकीन मानिए आपका पूरा हफ्ता ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड और प्रोडक्टिव बन जाएगा। याद रखिए, बड़ा रिजल्ट पाने के लिए हमेशा बड़े कदम उठाना ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी छोटे छोटे प्लान और लगातार की गई कोशिशें भी बड़ी सफलता तक पहुंचा देती है। तो इसी मंडे इवनिंग खुद के लिए थोड़ा सा समय निकालिए, अपने गोल्स लिखिए, अपनी प्रायोरिटीज तय कीजिए और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ नए हफ्ते की शुरुआत कीजिए। क्योंकि जब प्लान क्लियर होता है तो रास्ता भी आसान नज़र आने लगता है और जब रास्ता साफ हो तो मंजिल दूर नहीं होती। तो चलिए इसी हफ्ते को बनाते हैं और भी बेहतर और भी प्रोडक्टिव। कीप प्लानिंग, कीप ग्रोइंग, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड ऑफकोर्स म्यूजिक का मजा लीजिए ओनली ऑन MG 90.8 FM। साथ है तो बात है।

किसी को बनाता है ना तो उसमें कुछ खास बात होती है, लेकिन खुदा ने अदा को बनाया इसीलिए खास बात खुदा में है।

आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूँ आपकी होस्टर दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। कभी कभी कुछ गाने सिर्फ सुनाई नहीं देते, सीधे दिल तक पहुंच जाते हैं और ऐसा ही एक खूबसूरत एहसास लेकर आता है ये एक प्यारा सा गाना। जब दिल में किसी के लिए खास जगह बन जाती है तो फिर शब्दों की जरूरत कम पड़ जाती है, धड़कने खुद बातें करने लगती है, आँखें सब कुछ कह देती है और छोटी छोटी मुलाकातें भी यादगार बन जाती है। प्यार का सबसे खूबसूरत पहलू शायद यही है कि इसमें हर एहसास नया लगता है। कोई साथ हो दूर हो उसकी यादें हमेशा दिल के करीब रहती है और फिर कुछ गाने ऐसे बन जाते हैं जो हमें उसी खास इंसान की याद दिला देते हैं। तो अगर आज आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा शख्स है जिसकी मुस्कान आपके चेहरे पर मुस्कान ले आती है या जिसकी याद आते ही दिल थोड़ा सा खुश हो जाता है तो ये अगला गाना आपके लिए है। चलिए प्यार, अपनापन और खूबसूरत जज्बातों से भरे इस प्यारे से गाने का आनंद लेते हैं। अपनी यादों को ताज़ा कीजिए, दिल की आवाज़ सुनिए और म्यूजिक के इस खूबसूरत सफर को एंजॉय कीजिए। गाने का नाम है मितवा, ओनली ऑन एमजी 90.8 FM। साथ है तो बात है।

0: सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। भारतीय संस्कृति में ज्वेलरी सिर्फ सजने संवरने का हिस्सा नहीं है बल्कि इसके पीछे कई दिलचस्प मान्यताएं और कुछ साइंटिफिक कारण भी बताए जाते हैं। जरा सोचिए, हमारी दादी नानी के समय से महिलाएं बिछिया, पायल, चूड़िया, नथ और कानों के झुमके पहनती आ रही है। ये सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि जीवन शैली का भी हिस्सा रहा है। कहा जाता है कि कान छिदवाने से कान के कुछ प्रेशर पॉइंट्स एक्टिव हो जाते हैं, वही चूड़ियां पहनने से हाथों में लगातार हलचल होती रहती है जिससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर रहने की बात कही जाती है। इसी तरह पायल और बिछिया को लेकर भी मान्यताएं हैं कि पैरों के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हल्का दबाव बनाती है। हालांकि इन बातों के पीछे कई पारंपरिक और आयुर्वेदिक मान्यताएं भी है, लेकिन आज का साइंस इसमें से सभी दावों की पूरी तरह से पुष्टि नहीं करता। फिर भी एक बात तो तय है कि भारतीय ज्वेलरी हमारी संस्कृति, परंपरा और पहचान का खूबसूरत हिस्सा है। ये सिर्फ सुंदरता नहीं बढ़ाता बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही कहानियों और विश्वासों को भी अपने साथ लेकर चलता है। तो अगली बार जब आप कोई पारंपरिक ज्वेलरी देखे तो उसकी चमक के साथ साथ उसके पीछे छुपी सांस्कृतिक और दिलचस्प मान्यता को भी जरूर याद कीजिए। फिलहाल इसे खूबसूरत सोच के साथ आगे बढ़ते हैं अगले शानदार गाने की ओर। जुड़े रहिए हमारे साथ ओनली ऑन एमजी 90.8 FM। साथ है तो बात है।
1: हाथ उठाकर बुला रहा घर, चल रहे मुसाफिर, चल रहे अब अपने घर को, चल रहे। ये मेरी तमन्ना है आखिरी।

0: आप ऐसा करियर चुनना चाहते हैं जहाँ आपके भविष्य के साथ समाज का भी भविष्य बदले, तो आइए MGM University के डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी साइंस में, जहाँ डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, BSc ऑनर्स कम्युनिटी साइंस विद रिसर्च और ऑल्सो MSc स्पेशलाइजेशन इन फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स, एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड रिसर्च ओरिएंटेड एजुकेशन. एडमिशन ओपन फॉर 2026-27. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन 7620322186 और 7017085546. MGM University, NCT, Chhatrapati Sambhajinagar.
1: Wondering what's next?
2: Unlock your future at Mahatma Gandhi Mission University,
1: where innovation meets excellence. Admissions are open
2: across undergraduate, postgraduate, diploma and PhD programs
1: across diverse fields from engineering and AI to law.
2: Apply now at www.mgmu.ac.in
1: or call 9067612000.

आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्टर दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। मानसून का मौसम अपने साथ ठंडी हवाएं, बारिश के फुहारे और ढेर सारी ताजगी लेकर आता है, लेकिन इस मौसम में अपनी सेहत का ध्यान रखना भी उतना ही ज़रूरी है। बारिश के दिनों में हमारी इम्यूनिटी को थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट चाहिए होता है, ऐसे में गर्म और ताज़ा खाना हमारे लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकता है, जैसे गर्मा गर्म सूप, खिचड़ी, दाल, हरी सब्जियाँ और घर का बना ताज़ा खाना। अदरक, तुलसी और हल्दी जैसी चीज़ें भी इस मौसम में काफ़ी पसंद की जाती है। एक कप गर्म चाय में अदरक का स्वाद हो तो बारिश का मज़ा भी दो गुना हो जाता है। साथ ही इस मौसम में स्ट्रीट फूड का मज़ा लेने का मन तो करता है, लेकिन थोड़ा सावधान रहना भी बहुत ज़रूरी है। कोशिश कीजिए कि साफ सुथरा और ताज़ा खाना ही खाए और खूब पानी पीते रहे। याद रखिए, अच्छी सेहत ही हर खुशी की असली चाबी है। अगर शरीर स्वस्थ रहेगा तो हर मौसम और हर दिन का आनंद भी और भी ज्यादा ले सकते हैं आप। तो इस मानसून स्वाद और सेहत दोनों का बैलेंस बनाए रखिए, अच्छा खाइए, खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। और इसी पॉजिटिव सोच के साथ बढ़ते हैं अगले कुछ शानदार गानों की ओर। ओनली ऑन एमजीएम 90.8 एफएम, साथ है तो बात है।

है आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। जिंदगी की भागदौड़ में कभी कभी बस एक ऐसी जगह की जरूरत होती है जहाँ दिल की बात कही जा सके और कोई उसे सुनने वाला भी हो। अगर आपका दिन थोड़ा मुश्किल रहा है, अगर किसी बात की खुशी है या फिर कोई बात आपको परेशान कर रही है या किसी बात को आपको शेयर करना है किसी के साथ तो हम परेशान कर रही है या किसी बात को आपको शेयर करना है किसी के साथ तो हम है ना, क्योंकि ये सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं बल्कि आपका अपना साथी है। कभी कोई पुरानी याद मुस्कुरा देती है, कभी कोई बात दिल को थोड़ा सा परेशान कर देती है। ऐसे में अच्छा म्यूजिक और दिल से की गई बातें मन को सुकून देने का काम करती है। तो अगर आपको दिल को थोड़ा हल्का करना है, कुछ अच्छा सुनना है या बस अपनी बात किसी तक पहुंचानी है तो हमारे साथ जुड़िए। अपने मैसेज, अपनी फरमाइशें और अपने बातों को हमारे साथ शेयर कीजिए थ्रू माय इंस्टा हैंडल। मेरी इंस्टा आईडी है rjmanisha_, क्योंकि ये आपका रेडियो है, आपकी आवाज़ है, आपकी पसंद है और आपकी महफिल है। हम चाहते हैं कि जब भी आप हमें सुने आपको ऐसा लगे जैसे कोई अपना आपके साथ बैठा हो, आपकी बातें सुन रहा हो और आपकी मुस्कान की वजह बन रहा हो। तो दिल को सुकून चाहिए, थोड़ा सा साथ चाहिए और ढेर सारा अच्छा म्यूजिक चाहिए, तो बस हमें सुनते रहिए और अपनी बातें हमसे शेयर कीजिए। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त, आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से, ओनली ऑन MG 90.8 FM। साथ है तो बात है।

सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। अब धीरे धीरे मंडे इवनिंग को अलविदा कहने का वक्त आ गया है। उम्मीद है कि आज की शाम आपके लिए कुछ अच्छी रही होगी। चाहे दिन कितना भी बिजी रहा हो लेकिन आपने कुछ पल अपने लिए निकाले, अच्छे गाने सुने और हमारे साथ वक्त बिताया, इसके लिए दिल से शुक्रिया। मंडे अक्सर एक नई शुरुआत लेकर आता है, नए गोल्स, नए सपने और नई उम्मीदों के साथ। और अब जब ये शाम विदा लेने जा रही है तो उम्मीद है कि आप पूरे जोश और पॉजिटिव एनर्जी के साथ इस हफ्ते का स्वागत करेंगे। अगर आज कुछ अच्छा हुआ है तो उसे याद रखिए, और अगर कुछ आपके उम्मीदों के मुताबिक नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, पूरा हफ्ता अभी आपके सामने है। हर नया दिन एक नया मौका लेकर आता है, तो मुस्कुराते रहिए, खुद पर भरोसा रखिए और अपने सपनों की तरफ छोटे छोटे कदम बढ़ाइए, क्योंकि यही छोटे कदम एक दिन बड़ी मंजिल तक पहुंचाते हैं। अब हम भी आपसे इजाजत चाहेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए और हमेशा खुश रहिए। गुड बाय मंडे इवनिंग, थैंक यू फॉर योर लवली कंपनी। कल फिर मुलाकात होगी नई बातों, नई एनर्जी और शानदार म्यूजिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि, कीप स्माइलिंग एंड स्टे ट्यून्ड टू एमजी 90.8 FM। साथ है तो

0: अपने शहर के सिक्योरिटी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, याद है आपको? मतलब कैमरा लगाओ, इनॉग्रेशन करो, स्मार्ट सिटी बनाओ और फिर कैमरे को ही बोल दो मेंटेनेंस तो हमसे ना हो पाएगा भाई। हेलो आरजी अदनान को आप सुन रहे हो ऑन एमजीएम 90.8 एफएम एंड छत्रपति संभाजीनगर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंदर तकरीबन 800 सीसीटीवी कैमरे लगाए थे अपने पूरे शहर में। मकसद था शहर को एकदम सेफ बनाना। क्या बात यार, ये तो बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव लिया था ना। लेकिन एक रिपोर्ट में मुताबिक अपने शहर में 100 से ज्यादा कैमरे फिलहाल बंद है और वजह क्या है? मेंटेनेंस का इशू। जी हाँ, बात कुछ ऐसी है कि सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में तकरीबन 161 करोड़ रुपए खर्चा आया था और कैमरे के मेंटेनेंस का काम भी एक कंपनी को दिया गया था जिसका कॉन्ट्रैक्ट 2026 तक था बस। लेकिन स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की डेडलाइन खत्म हुई और कैमरा मेंटेनेंस का सवाल सामने आ गया। देखो, स्मार्ट सिटी के पास कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, ऑपरेशन कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी है, बस कंट्रोल में नहीं है वो अपने शहर के सीसीटीवी कैमरास। और मेंटेनेंस के लिए साल भर में पूरा 10 करोड़ का खर्चा आता है। अब प्रशासन ने कहा है कि 2027 तक मेंटेनेंस का काम पूरा कंप्लीट हो सकता है फंड आने के बाद। वैसे सवाल सिंपल यार, कैमरा लगाने के बाद अगर कैमरा ही बंद हो गया तो सिक्योरिटी किसकी और मॉनिटरिंग किसकी? स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट तो स्मार्ट होता जा रहा है लेकिन सीसीटीवी को थोड़ा स्मार्टली ऑन करना भी इम्पोर्टेंट है। खैर, अगर आप अपने शहर के सीसीटीवी के भरोसे बैठे होंगे और आपको लगता होगा कि शहर के सीसीटीवी सारे के सारे ऑन है तो ऐसे गोड़ गैर समझ बदे नकारा हो। सो देखते हैं अब ये कब मेंटेनेंस इन कैमरे का पूरा होगा जो कि 100 से ज्यादा कैमरे बंद है उनका, और शहर पूरी तरीके से पूरा स्मार्ट कब होगा इसको थोड़ा टाइम तो लगेगा। सो स्टे ट्यून्ड विद आरजे अदनान इन द शो।
1: रंगभूमीच्या कलाविश्वाचा अनुभव घ्यायचाय? मग तयार व्हा जिगीशा नाट्य महोत्सव 2026। नाट्यप्रयोग, अभिवाचन, परिसंवाद आणि रंगभूमीशी संबंधित विविध कार्यक्रमाची खास मेजवानी। या महोत्सवाचे उद्घाटक प्रसिद्ध अभिनेत्री रत्ना पाठक तर नाट्यविषयक पुस्तक प्रदर्शनाचे उद्घाटक ज्येष्ठ लेखक बाबा भांड, सवाल जवाब, एमएचजी सूटकेस आणि भरड यांसारखे दर्जेदार नाट्यप्रयोग। मराठवाडा आर्ट कल्चर अँड फिल्म फाउंडेशन आणि महात्मा गांधी मिशन आयोजित जिगीशा नाट्य सहवास 2026 21-22 आणि 23 ऑगस्ट रुक्मिणी नाट्यगृह एमजीएम परिसर छत्रपती संभाजीनगर। तरी सर्व रसिक प्रेक्षकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे।

0: आप ऐसा करियर चुनना चाहते हैं जहां आपके भविष्य के साथ समाज का भी भविष्य बदले, तो आइए MGM यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी साइंस में, जहां डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, BSc ऑनर्स कम्युनिटी साइंस विद रिसर्च और अल्सो MSc स्पेशलाइजेशन इन फूड न्यूट्रिशन एंड डायटिक्स, एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड रिसर्च ओरिएंटेड एजुकेशन। एडमिशन ओपन फॉर 2026-27। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन 7620322186 और 7017085546। MGM University, NCT, Chhatrapati Sambhaji Nagar।
1: Wondering what's next?
2: Unlock your future at Mahatma Gandhi Mission University,
1: where innovation meets excellence. Admissions are open
2: across undergraduate, postgraduate, diploma and PhD programs
1: across diverse fields from engineering and AI to law.
2: Apply now at www.mgmu.ac.in
1: or call 9067612000.

राघव जुयाल को हमने अब तक देखा है डांस करते हुए, कॉमेडी करते हुए, होस्ट करते हुए, लेकिन अब हम उसे देखेंगे विलन का रोल निभाते हुए भी। हेलो आरजी अदनान को आप सुन रहे हो ऑन एमजीएम 90.8 एफएम। और राघव ने भाई क्या एक्टिंग की है टीजर के अंदर समझ में आ रहा है। साउथ की फिल्म है नानी की अपकमिंग एक्शन थ्रिलर द पैराडाइज का टीजर आ चुका है और फिल्म में राघव जुयाल बने हैं विक्रम मालिक, एक विलन का कैरेक्टर ये निभाने वाले हैं। टीजर में राघव का लुक देखो, टीजर में राघव का लुक ना एकदम बेहतरीन है। देखो नानी की ये फिल्म है, नानी ने तो बहुत बेहतरीन एक्शन की है, लीड एक्टर वो है, लेकिन कहीं ना तो राघव के फैंस को राघव का किरदार ने ज्यादा अट्रैक्ट किया है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जब एक एक्टर अपनी एस्टैब्लिश्ड इमेज से कंप्लीटली अपोजिट कैरेक्टर चूज करता है ना, तो ऑडियंस के लिए क्यूरियोसिटी ऑटोमेटिकली बढ़ ही जाती है। नानी की क्या ही तारीफ करें यार, ऑलरेडी बहुत सुपर डुपर हिट वो एक्टर है और जिस तरीके से उनका इस फिल्म के अंदर लुक है ना भाई, एकदम राउडी वाला है और रॉकिंग वाला है, देख के तो मजा आने ही वाला है। और सबसे खास बात तो भाई सबका एकदम ध्यान खींच लिया था राघव जुयाल के लुक ने और उनके कैरेक्टर ने। राघव जुयाल विलन बनके नानी की दुनिया में कितनी तबाही मचाएंगे। बाय द वे नानी मतलब वो एक्टर है, उनका नाम नानी है। आप ये मत सोचिएगा कि नानी नानी क्यों कह रहा है, ओके? अगर आपने अब तक ये टीजर नहीं देखा है तो द पैराडाइज का टीजर देख लीजिएगा और जल्दी इसका ट्रेलर भी लॉन्च होने ही वाला है। फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं श्रीकांत ओडेला और म्यूजिक है अनिरुद्ध का। आए हाय अनिरुद्ध का म्यूजिक तो लाजवाब होता ही है। तो भाई डांस फ्लोर से विलन जोन तक राघव जुयाल का ये ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेटली इंटरेस्टिंग होने ही वाला है। द पैराडाइज, जहां पैराडाइज नाम है लेकिन दुनिया बिल्कुल पैराडाइज वाली नहीं लग रही है। बाय द वे टीजर आपको कैसा लगा बताइए मुझे DM on Insta RJ Adnan।

0: आप ऐसा करियर चुनना चाहते हैं जहां आपके भविष्य के साथ समाज का भी भविष्य बदले, तो आइए MGM यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी साइंस में, जहां डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, BSc ऑनर्स कम्युनिटी साइंस विद रिसर्च और अल्सो MSc स्पेशलाइजेशन इन फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स, एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड रिसर्च ओरिएंटेड एजुकेशन. एडमिशन ओपन फॉर 2026-27. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन 7620322186 और 7017085546. MGM यूनिवर्सिटी, NCT, छत्रपती संभाजीनगर.
1: रंगभूमीचा कला विश्वाचा अनुभव घ्यायचा आहे? मग तयार व्हा जिगीशा नाट्य महोत्सव 2026. नाट्यप्रयोग, अभिवाचन, परिसंवाद आणि रंगभूमीशी संबंधित विविध कार्यक्रमाची खास मेजवानी. या महोत्सवाचे उद्घाटक प्रसिद्ध अभिनेत्री रत्ना पाठक, तर नाट्यविषयक पुस्तक प्रदर्शनाचे उद्घाटक ज्येष्ठ लेखक बाबा भांड, सवाल जवाब, MHJ सुटकेस आणि भरड यांसारखे दर्जेदार नाट्यप्रयोग. मराठवाडा आर्ट कल्चर अँड फिल्म फाउंडेशन आणि महात्मा गांधी मिशन आयोजित जिगीशा नाट्य सहवास 2026 21-22 आणि 23 ऑगस्ट रुक्मिणी नाट्यगृह MGM परिसर छत्रपती संभाजीनगर. तरी सर्व रसिक प्रेक्षकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे.
2: Wondering what's next?
3: Unlock your future at Mahatma Gandhi Mission University,
2: where innovation meets excellence. Admissions are open
3: across undergraduate, postgraduate, diploma and PhD programs
2: across diverse fields from engineering and AI to law.
3: Apply now at www.mgmu.ac.in
2: or call 906761-2000.

0: रंगभूमीच्या कलाविश्वाचा अनुभव घ्यायचाय, मग तयार व्हा जिगीशा नाट्य महोत्सव 2026. नाट्यप्रयोग, अभिवाचन, परिसंवाद आणि रंगभूमीशी संबंधित विविध कार्यक्रमाची खास मेजवानी. या महोत्सवाचे उद्घाटक प्रसिद्ध अभिनेत्री रत्ना पाठक, तर नाट्यविषयक पुस्तक प्रदर्शनाचे उद्घाटक ज्येष्ठ लेखक बाबा भांड, सवाल जवाब, एमएचजी सूटकेस आणि भरड यांसारखे दर्जेदार नाट्यप्रयोग. मराठवाडा आर्ट कल्चर अँड फिल्म फाउंडेशन आणि महात्मा गांधी मिशन आयोजित जिगीशा नाट्य सहवास 2026 21-22 आणि 23 ऑगस्ट रुक्मिणी नाट्यगृह एमजीएम परिसर छत्रपती संभाजीनगर. तरी सर्व रसिक प्रेक्षकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे.
1: क्या ऐसा करिअर चुनना चाहते है जहाँ आपके भविष्य के साथ समाज का भी भविष्य बदले, तो आइए एमजीएम यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी साइंस में, जहाँ डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, बीएससी ऑनर्स कम्युनिटी साइंस विद रिसर्च और ऑल्सो एमएससी स्पेशलाइजेशन इन फूड न्यूट्रिशन एंड डायटिक्स, एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड रिसर्च ओरिएंटेड एजुकेशन. एडमिशन ओपन फॉर 2026-27. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन 7620322186 और 7017085546. MGM University, NCT, Chhatrapati Sambhajinagar.
2: Wondering what's next?
3: Unlock your future at Mahatma Gandhi Mission University,
2: where innovation meets excellence. Admissions are open
3: across undergraduate, postgraduate, diploma and PhD programs
2: across diverse fields from engineering and AI to law.
3: Apply now at www.mgmu.ac.in
2: or call 9067612000.

का आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MG 94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

0: फ्रीक्वेंसी नहीं, यह है आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।
0: ये है MGM 90.8 FM,
2: साथ है तो बात है।

0: दिल की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे। अपना रेडियो, अपनी बातें, गीत, खबरें, जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।